0: चारदेखि पाँच महिनामा गर्नुपर्ने एनोमली स्क्यान हरेक महिनाको दोस्रो र अन्तिम शनिबार दुई पटक रेडियोलोजिस्टबाट भिडियो एक्सरे शुरूआत भएको छ।
1: अनि यो एनोमली स्क्यान भनेको के हो नि?
2: गर्भमा रहेको बच्चाको मुटु, फोक्सो, पेट, टाउकोमा पानी जमेको, अपाङ्गताका साथै बच्चाको भित्री अङ्गहरूको विस्तृत जाँच भिडियो एक्सरे द्वारा गरिन्छ।
1: साइना मेडिकल हलका सेवाहरू,
3: भिडियो एक्सरे, ल्याब सेवा, विशेषज्ञ डाक्टरद्वारा बिरामी जाँच, आँखा जाँच अनुसारको चस्मा तयार गरिने, प्रत्येक महिनाको चौथो शनिबार रेडियोलोजिस्टद्वारा भिडियो एक्सरे, एनोमली स्क्यान, पाठेघर लगायत सबै प्रकारको भिडियो एक्सरे पनि गरिन्छ।
2: साथै थाइरोइड स्क्यान, ब्रेस्ट स्क्यान, सुपरफिसियल स्क्यान, पाठेघरको जाँच तथा सबै प्रकारको भिडियो एक्सरे सेवा समेत उपलब्ध रहेको छ।
0: साथै रगत, सुगर, थाइरोइड, टाइफाइड, एचबी A1C, LFT, RFT, युरिक एसिड, बाथरोग, क्याल्सियम पिसाब तथा दिशा जाँच गरिन्छ।
2: स्मरण रहोस्, दैनिक विशेषज्ञ डाक्टरहरूद्वारा बिरामी जाँच, दृष्टि विशेषज्ञद्वारा आँखा जाँच तथा चस्मा पनि तयार गरिन्छ।
1: साइना मेडिकल हल भुरी गाउँमा, जिल्ला अस्पताल गुलरिया बर्दियामा कार्यरत MBBS MD कन्सल्टेन्ट फिजिसियन, छाती, मुटु, पेट, नसा, थाइराइड, दम तथा मधुमेह रोग विशेषज्ञ डाक्टर सूर्यप्रकाश शाहका साथै दृष्टि विशेषज्ञ नेहा शाह र पूर्व जनस्वास्थ्य निरीक्षक हेल्थ असिस्टेन्ट SY नवीन शाहबाट बिरामी चेक जाँच गरिन्छ।
0: साइना मेडिकल हल भुरी गाउँ बजार बर्दिया वाणिज्य बैंकको पश्चिम पट्टी, नाम दर्ताका लागि सम्पर्क मोबाइल नम्बर 98442 55909 र 98442 97517।
4: जीतपुर वाली, यह साल तो निश्चिंत हो गवा गए।
5: हाँ, तब पतलिया याद करो तो जू डराए लागत है। पानी जब बरसत रहा तब इतना आनंद से कहाँ बैठे मिलत रहा। सोचो तब नदी किनारे के घर पानी पड़े लागे कि जू घबराए लागत रहा।
4: हाँ तो भले सही समय पर नदी के किनारे से सुरक्षित जगह पर चल गवा।
6: बरसात के मौसम में बाढ़ के खतरा ज्यादा होता है, यही नाते बाढ़ से बचे खरती पहले से तैयारी और सावधानी अपनावा जाए। नदी नारा में पानी अगर बढ़ा है तो सतर्क हो जावा जाए। एम्बुलेंस, सुरक्षा निकाय, स्वयं सेविका सबके संपर्क करे, सूची तैयार पारा जाए। एकाएक जरूरत पड़े वाला सर सामान के झोला तैयार रखा जाए। सतवे बरसात के समय में रोग लागे जोखिम ज्यादा हो नाते पानी उबाल के पिया जाए, सर सफाई में ध्यान दिया जाए।
7: प्लान इंटरनेशनल नेपाल और भेरी वातावरणीय विशिष्टता समूह बी ग्रुप बांके के साझेदारी में बर्दिया जिला में संचालन हुई रहा विपद पूर्व तैयारी उत्थानशीलता और सबलीकरण परियोजना द्वारा जनहित के खातिर जारी संदेश।
8: नसाते रोग छिट्टे बढ़ते, ध्यान नदिदा जीवन खत्म होते, सन्तुलित खाना खाऊ, व्यायाम हरेक दिन गरौं, धूम्रपान र मदिरा टाढा राखौं, तनावलाई नियन्त्रण गरौं, आजको निर्णय भोलिको जीवन उज्यालो हो, नसर्ने रोगबाट जोगियौं, स्वस्थ जीवन अपनाऊ। स्वास्थ्य कार्यालय बर्दिया र रेडियो टाइगरद्वारा जनहितमा जारी सन्देश।
9: यो हो तपाईँको आफ्नै रेडियो, रेडियो टाइगर 99.2 MHz।
10: रहनेछ अहिलेको लागि कार्यक्रम ज्योतिष दर्पणमा यिनै जानकारीहरू दिए। हामी कार्यक्रमको यतिखेर शुरूवाती चरणमा छौं, कार्यक्रमलाई ढिलो नगरिकन हामी अगाडि बढाउँछौ आजको पञ्चाङ्ग अनि आजको ग्रह गोचरबाट।

अवनीति 2083 साल असार 29 गते आज सोमबार तदनुसार ईस्वी सन् 2026 जुलाई 13 तारीक नेपाल सम्मत 1146 तथलागा रौद्र नाम संवत्सर श्री सूर्योत्तरायण ग्रीष्म ऋतु आषाढ कृष्ण पक्ष परम पवित्र पावन दिन रहेको साँझ सूर्योदयमा चतुर्दशी तिथि 32:35 वाला दिनको 6:20 तत्प्रान्त भने अमावस्यम यानि कि औंसी तिथि प्रारम्भ रहनेछ। आर्द्र नक्षत्र 55:51 ध्रुवयोग 29 रहेको छ भनी भद्राकरण 5:40 आज आनन्द

0: 9 बजेदेखि 1 बजेसम्म
1: चौधरी आयुर्वेद औषधालय जिल्ला प्रशासन सिडिओ कार्यालयको सामुन्ने नेपालगञ्ज बाँके
2: डाक्टर अनिल कुमार चौधरी कन्सल्टेन्ट आयुर्वेद विज्ञ नेपाल सरकारबाट मान्यता प्राप्त एवं परामर्श चिकित्सक सम्पर्क नम्बर 98480 27590 र 081534328 फेरि सुन्नुहोस् है 98480 27590

0: तुम ऐसी कोई भी लड़की नहीं हो, कैसे एक्सप्लेन करूँ कि तुम स्पेशल हो?
1: ये भी मैं बताऊँ, मैं कैसे स्पेशल हूँ ये मुझे बताना है, तो तुम क्या करोगे? रोज

प्रिय मैगर कविला हुक्र जय मसी और नमस्कार। मैं अपना हुकन के बीच में फिर महात्मा प्रसाद चौधरी आगे लाटो। आज हमारा धन सम्पत्ति का शीर्षक में वचन हेर जाइटी। हमारा बाइबल में चेतावनी बात पैठी का करे की हुक्र आपन है शिक्षक और प्रचारक हो गए का कथा एक अर्थ हुक्र आपन है सत्य बात बोल ठकलक नहीं हो। बाइबल में ढार मेरी झूठा अगमबक्तक बारे में बताइला बा ओ हमारा हाली से कुछ अगमबक्तक बारे में हेर भी कबिला हुक्र मई समय एकदम भार खतरक बात बताई चाह जुन खतरा मंडली में बा आजकालिक दिन में इस संसार का अंत हुई जायता गई का एकदम हाली से बात बता दर था। धर्मशास्त्र बाइबल बताए कि संसार का अंत कहिया हुई कना बात किनो फे था नहीं हो। हमरा समय संग चिन्ह देख दी जिन द्वारा लग्घा बा कना बात था हुई था और ख्रीस्ट आगमन का लाग तैयार रहना हो। तर यदि कोई अपना थ्याका कही कि यह वर्ष संसार अंत हुई था यह महीना जून चाहे मूर्ख बात हो कभी ना होगा अपना हुकन था बा अपना होगा फे असिन मेरी झूठा आगम वक्ता हुकन से और आगम वक्ता हुकन मुहम से शायद कुछ वचन कुछ बात अपना सुनल हुई भी और चाहे एकदम खतरनाक बात चाहे जून मनैनाथ और मनै हुकन डरावना दिए देती रहा वो हो मानसिक बीमार कबीला हुकरा हमरा एकदम होशियार रह पड़ता। डर परमेश्वर से अलग नहीं हो ये तो संसार के और शैतान के प्रभाव हो। अपना डराई कई का शैतान चाहत अपना आशा गुमाई कई का शैतान चाहत आई दान से हमरा आगा बढ़ी जिन्ना धन सम्पत्ति सुसमाचार गई का कथा आज एक मंडली माँ एकदम डरलगती बात इफे हुई बा का करे की कुछ झूठा शिक्षक हुकरा प्रचारक हुकरा आगा कथा अपना धनी बनी गई का परमेश्वर चाहता वो अपना वो अपन बच्चन राजा हुई थी वो यह मेरी तरीका ले आज मंडली स्वाचा लागत और परमेश्वर चाहता की अपना राजकीय जीवन जी कई का हुकरा सिखाए लगता अपना ढेर महंगा महंगा लुगा लगाए अपना ढेर महंगा गाड़ी किनी कबीला हुकरा देख या कर लाग विश्वास करी कई का कथा और विश्वास के बारे में व्याख्या कर लगता हुकरा कुछ पढ़े देखा का अपना बुझाए खोज लगता हुकरा पढ़े फिर देखे था मला की 3 अध्याय के 10 पढ़े हुकरा ढेर प्रयोग करता जाति का कहा वाला ये पद एकदम महत्वपूर्ण बा ये पद है मई मर सेवका के दौरान में ध्यान प्रयोग कैला से बाटू और मही लागत एकदम मजा पद बा का करे की ये पद परमेश्वर अपना है आशीष देना बात और आशीष देना कारण है बताए और परमेश्वर वहाँ की महानता अपना जीवन में देता जुन बात एकदम सत्य हो। तर ये झूठा अगमबक्ता हुकरा असी का बटाई लसक करता हुकनक सेवकाय लाग हुकनक लाग अपना ढेर पैसा दी हुकरा अपन बारे में किलिक सोचता सेवकाय बारे में और जनक बारे में नहीं परमेश्वर जनल बाटा की पैसा कबू काल अपना लाग भार दुश्मन बनत बाइबल ये बारे में सिखाइत रुपया पैसा मोह सारा खराबिक जड़ हो। ई बारे में विचार करी खाली पैना पैना पैना देना तो बात ही नहीं हो देना बात चाहे उनका संस्था गलत हो। आज हमन बाइबल सिखाए कि लेना एक बात किल लेना बात किल गलत हो ऊ चाहे अबाइबलीय हो कबिला हुकरा आय हमरा मलाकी 3 अध्याय के 10 पद का जातिक बुझाए का हो गए कहेरी ई पद विश्वासी जब दशांश नहीं देता उब्याला ई पद का ध्यान प्रयोग हुई था ये चाहे देना बात हो कोई कोई परमेश्वर हुकन आशीष जलक चाहते परमेश्वर का सेवा उखरा नहीं करता। अब पहली बात परमेश्वर एकदम मजा उपहार देता जब परमेश्वर हमन जुन चाह देता वो चाह चाहे हमारे शब्द पली रहता और वो चाह कुछ भाग हमारा वहाँ राज्य के लाग और हमारे लाग प्रयोग करती और प्रयोग करी मैं विश्वास करती हूँ कि हमारा क्रिश्चियन शिक्षा क्षेत्र में प्रयोग करी टूहरा टूहरी हुकन के लाग हमारा सहायता कर सक भी विधवाओं का सहायता कर सक भी जुन बात बाइबल हमन स्पष्ट एकदम स्पष्ट रूप में बताइला बा हमारा मिशन का काम में खर्च कर सक जुन द्वारा संसार का सारा मन हुकरा वहाँ संदेश सुना पाए और प्रभु येसु ने अपन व्यक्तिगत मुक्तिदाता और प्रभु के स्वीकार कर ही कल से उद्धार पाई ये चाहे हमारा आर्थिक चार्ज का उद्देश्य हमारा बनाए पड़ता जुन चाहे प्रभु येसु हमारा मंडली है दिलक महान आज्ञा फे हो परमेश्वर का संदेश सुनाई ताकि और जना फिर मुक्ति पाइट दान से देना अथवा बाकी रहल विश्वासी हुकन संदर्भ में लौट कर जाई यदि ख्रीस्ट हुकन थे बाटा कई का कथा तर देना बारे में हुकरा नहीं बुझल रहा और हुकरा बलिदानी मेरी तरीका ले नहीं देता उसी मने हुकन मला की 3 अध्याय के 10 पद बताई था उसी मने हुकरा परमेश्वर माँ और परमेश्वर का आशीष नहीं पाई था जाति कह ब्याला ई मने हुकरा परमेश्वर माँ भरोसा नहीं करता इनका परमेश्वर में विश्वास ही नहीं धरता यदि इनका देना
कामकर्ता तब थाहा पाइत कि परमेश्वर हुकनक हेरचाह कर्ता, परमेश्वर हुकन सुरक्षा दिया जाइता, परमेश्वर हुकनक आवश्यकता है परिपूर्ति कर्ता। जुन बात मलाई तीन अध्याय के दस पद में बताए, जहाँ बताए बलिदानी तरीका से परमेश्वर है देव, एकदम मजा चाच वहाँ में देव। और परमेश्वर स्वर्ग डगर से स्वर्ग द्वार खोल कर आशीष दी, जुन एकदम ध्यार आशीष बरस का कर की परमेश्वर का आशीष अपना थे होकर बही का कर की परमेश्वर जनथ की जुन चार्ज अपने है दिहल रही वाकर सदुपयोग अपना कर जनथी वहाँ अपने है दी ताकि अपना वाकर सदुपयोग अपन लाग और सेवका लाग और सेवक काम का लाग मजा से प्रयोग करी। और से मई वहाँ मार सारा हृदय से विश्वास करतु कि वहाँ अमन वहाँ धर्म शास्त्र से पैसा लोभ के बारे में चेतावनी देता कि वो कट्टर दुष्ट रहत, ओ कसिन हमन अपन बस में पारत, वो हमार जीवन नाश करत, जुन बात अपना एकदम होशियारी का साथ लिया पड़ता। यदि पैसा से ओ पैसा है कसी का चलाइना कना बात अपना हुकन ठा नहीं होगा से परमेश्वर अपना है पैसा जिम्मा नहीं दी का करी वो पैसा अपना है जकड़ का धरी और नाश पारी, जुन चाहे अपना जीवन का केंद्र बनी। परमेश्वर चाहता हमरा उही ना वहाँ का राज्य लाख प्रयोग करी और हमरा वहाँ कर पूजा ना करी अथवा हमरा उही ना परमेश्वर का दर्जा हमरा जिंदरी आज ध्यान मने हुकरा कौनो कौनो मंडलिक मने हुकरा फे पैसा है वह देवटक रूप में हेरथा, पैसा है परमेश्वर के स्थान में ढाईकर हुकरा हेरथा और पैसा के आराधना करास हुकरा उनके जीवन जीता। जब हमरा ये मुक्ति के संदेश सुनती परमेश्वर वहाँ आपन सित्ते में डेला कना बात था पैती बाती वहाँ है अपना किन का किन्ना नहीं सक भी अपना वहाँ है भाड़ा में लिया नहीं सक भी सेवका लाग अपना डेलक दान से पैसा ले वहाँ प्रभावित नहीं अपना पैसा डेलक में मंडलिक मने हुकरा आहा कहा से की ओ अपना मन में फिर लागा से की मैं फिर देनू ओ एक धर्मी मने एक रूप में वो अपना मुक्ति पायल अभास अपना शायद कर सक भी तरह अपना पहला क्षमादान परमेश्वर का देलक और मुक्ति परमेश्वर का देलक वरदान का रूप में पहला बाटी अपना है कौनो पास्टर आकर कोई अगुआ आकर अपना मुक्ति की निश्चयता नहीं करल हो अपना निश्चयता येसु में सीते में पहला निश्चयता हो अपना ध्यान दिए नहीं सक भी कला से दान से छोटी विश्वास हुई थी अथवा छोटी विश्वास अपना ठेबा कना चाहिए नहीं हो विचार करी एक तो विधवा जे अपना थे शायद अपना थे दान से रहा लसक शायद वो विधवा थे एकदम दुई पैसा किल रहीस परमेश्वर में भेटी दुई पैसा के भेटी वो अनली ध्यार धनी मने हुकरा अपन धन संपत्ति प्रशस्तता में अनला तरह गरीब विधवा अपन थे रहल सर्वोच्च परमेश्वर में चढ़ी ऊ चाहे बलिदानी पूर्ण भेटी चढ़ेली और परमेश्वर हुकहीन आशीष देला कबीला हुकरा एकदम होशियार रही। जब मने हुकरा अपना से पैसा मंगी कल से सोची की अपना देला पैसा का सही ठाव में जाइता सही काम में जाइता अपन हृदय में विचार करी इस सब उदाहरण अपना मन में उदाहरण हो ओ काजे अपना देना बाटम बटेलक उदाहरण अपना देना कलक परमेश्वर का क्षमादान पाइकला देना नहीं हो तर अपना वहाँ है प्रेम करती वहाँ आज्ञा बाकी संसार का सारा मने हुकरा मुक्ति पाए और से वो कामक लाग अपना देती कबीला हुकरा यदि अपना हुकन मन लागी मुठी खोलना मन लागी अपना हुकरा सेवकाय लाग सेवक करती कल से एकदम जन ही पड़ना बात चाहिए परमेश्वर अपना है ओ महीना ध्यार आशीष दी ताकि हमारा संसार भर मिलकर ख्रीस्त का सुसंदेश मुक्ति सुसंदेश सुनाई सक भी अने आज जब हमारे मुक्ति संदेश सुनाई भी सक्कू मने हुकरा ख्रीस्त का संदेश सुनकर हुकरा आत्मा बसना अवसर पाई अने हुकरा अनंत जीवन का भागीदार परमेश्वर आज की वचन द्वारा अपना सच्चे आशीष दिया।

प्रिय मैगर कवि लाहुद्रा, आजिक कार्यक्रम सुनके अपने हिन प्रसन्न लागल। आशा बा पक्कै फेन आशिषमय लागल हुई। यदि ई कार्यक्रम के लाग अपने के धन कौनो प्रश्न जिज्ञासा हो सुझाव बकलेसे वस्तहा का बाइबल सम्बन्धी कौनो पुस्तक पुस्तिका पाएका ठिबी कलेसे एकदम ढुकचुक निमान का पत्रचार करी। हमार ठेगाना बा कार्यक्रम मुक्ति सन्देश, TWR नेपाल, GPO बक्स नम्बर 8975, EPC 2561, काठमाडौँ नेपाल। SMS के लाग मोबाइल नम्बर 98 4705679 ओ NCL के लाग 98 133 00690। वस्तहाँ के फोन नम्बर बा 01559 10 53। यदि अनलाइन मथेन रेडियो सुना चाह ठिबी कहले से हमार वेबसाइट हो www.twrnepal.com। म अपना सुना सकबी।

0: जीतपुर वाली यह साल तो निश्चिंत हो गवा गए।
1: हाँ तब परसलिया याद करो तो जू डराए लागत था। पानी जब बरसत रहा तब इतना आनंद से कहाँ बैठे मिलत रहा। सोचो तब नदी किनारे के घर पानी पड़े लागे कि जू घबराए लागत रहा।
0: हाँ तो भले सही समय पर नदी के किनारे से सुरक्षित जगह पर चल गवा।
2: बरसात के मौसम में बाढ़ के खतरा ज्यादा होत है, यही नाते बाढ़ से बचे खरती पहले से तैयारी और सावधानी अपनावा जाए। नदी नारा में पानी अगर बढ़ा है तो सतर्क हो जावा जाए। एम्बुलेंस, सुरक्षा निकाय, स्वयं सेविका सबके संपर्क करे सूची तैयार पारा जाए। एकाएक जरूरत पड़े वाला सब सामान के झोला तैयार रखा जाए। सतवे बरसात के समय में रोग लागे जोखिम ज्यादा हो नाते पानी उबाल के पिया जाए, सब सफाई में ध्यान दिया जाए।
3: प्लान इंटरनेशनल नेपाल और भेरी वातावरणीय विशिष्टता समूह बी ग्रुप बांके के साझेदारी में बर्दिया जिला में संचालन हुई रहा विपद पूर्व तैयारी उत्थानशीलता और सबलीकरण परियोजना द्वारा जनहित के खातिर जारी संदेश।
4: के रेडियो ठों ठों के आवाज रेडियो टाइगर उन्हें बुढ़ा देने का।